0: इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
1: काका जी टेंशन छोड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
0: याद रखो 9077-97-33
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
0: हर कदम तुहाडे नाल।

0: तो ठीक है, ये
1: नहीं आवाज ठीक
0: नहीं
1: है,
0: तो चल रहा है, आवाज ठीक है,
1: हाँ नहीं
0: आवाज इज
1: ठीक है,
0: ओके।
1: ठीक है, ओके।
0: चलो मैं फिर भी ला ही लेना, फिर बचा के बचा के।
1: नहीं यार ठीक है, डोंट ड्राइव एंड टॉक गाइस, इधर
2: यस
1: काम ना करया करो प्लीज, है ना,
0: वो तो है ही,
1: ये दसना जरूरी
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। मैं गल कर दे नहीं दस रहा तुम, इन्हें सोचे मैं
1: हाँ
0: गल
1: नहीं
0: कर
1: नहीं
0: रहा।
1: नहीं हाँ ये भी गल सही है। आप तद तक मैसेजेस ले लेने ते जी, सानू नीना सरब जी भेज देने कि वेरी प्रोडक्टिव टॉक आई एंजॉय एट माय रोड ड्यूरिंग कम्युनिटी नर्सिंग, क्या बात है, थैंक्स कीप इट अप। मैं कम्युनिटी नर्सिंग दियां लाइया हुई हैं प्लेसमेंटा, सब तो फन सेगा, इट वॉज सो गुड। हाँ मैं पूरा शहर घूमया सेगा बेंसडेल एंड इन्नी वधिया नर्सिस सीगियां सारियां, उन्होंने मैनू फेरी कहिंदे हो गए, कहिंदे बस इन्ने के पेशेंट ही है, कहिंदे रोज ही थोड़ा देखिया ने। मैंने स्पेशली फॉरेस्ट ट्रेल ते लैके कुआला कुला दिखाया, मैं क्या वेरी नाइस यार,
2: ओ वाह
1: बहुत वधिया।
2: कृष्णा जी
1: ते इधरों नीतू गिल जी भेज देने, कहिंदे सत श्री अकाल सारिआं नूं, लाइव सुन रहे ने ते कहिंदे ने कि अपना नीतू जी नूं कहो प्यार दे चर्चे दा तां पता नहीं, रेडियो हांजी दा चर्चा मैं ऑल इंडिया च कर दिता आ जी, रेडियो हाँ जी जिंदाबाद मिसिंग यू ऑल जी। नीतू जी असी भी थोनू काफ़ी टाइम तो मिस कर रहे हैं
2: जी,
1: छेती छेती आओ तो फिर सानू कहानियां सुनाओ अपनियां। ते जतेंद्र पाल जी भेजते हैं कि नोनिया चली V8 ते धूड़ उड़ा उड़ाई जावे, पेट्रोलां दे रेटां दी परवाह ना कोई, दिल विच वी मुस्काई जावे, वाह अखां उत्ते ऐनक काली, सड़कां उत्ते चर्चे हुंदे जिधरों नोनिया चले, वाह V8 दी गूंज सुन के सारे पासे वेखण, नोनिया दी स्वैग अगे वड्डे वड्डे वी लगण फिक्के, गड्डी छोटी रौला वड्डा नखरा पूरा नवाबी, स्टेयरिंग उत्ते बैठी लगे जिवे दुनिया दी राणी, वाह जारे कर गए यार,
2: वेरी नाइस।
1: पेट्रोल भावे 100 तो टप्पे भावे 200 हो जाए, नोनिया दे चेहरे उत्ते फर्क ना कोई आवे, हसदी हसदी गेर पा दे V8 दौड़ लगावे, पिछे छड़ के दुनिया सारी अपनी टोर बनावे, वाह वाह वाह, थैंक यू जी, थैंक यू नोनिया जी,
2: थैंक यू वेरी मच जी,
1: क्या बात,
2: किने किने ने भेजे है,
1: जतेंद्र पाल जी ने सानू भेजे
2: जी, वाह जतेंद्र पाल जी, थैंक यू वेरी मच।
1: ते सत श्री अकाल सानू अमिता जी वल्लों भी आंदी है, ते कहंदे ने कि गाना ला दो जी, जरूर ला दांगे जी, इस तों बाद कोई चक्कर वाली गल ही नहीं है। ते HS चंडी जी भी कहंदे ने कि अजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे आसमां पर तुमसे, अच्छा तुमसे तो अगे उन्होंने लिखा नहीं, चलो ठीक है जी, गाना क्या एंड है बेसिकली मेरे हिसाब से यही कहना चाह रहे थे। तो इधर ट्रिपल 0 वाले बजाज साहब वो कहते हैं कि सत श्री अकाल सारों, नाइस शो एज ऑलवेज, तो कहते इस वीक सब तो घेंट गल ये हुई कि उन्होंने ग्रेटेस्ट रेडियो हाँ जी ते पहली बारी कॉल लाई, हाँ जी कल असी इन्हों पहली बारी गल की है, तो देख लो, तो कहते हूँ मैं बहुत कंफर्टेबल फील करदा, तो मेरे लिए बहुत वड्डी अचीवमेंट सी जी, बिल्कुल। देखो कोई
2: nice.
1: भी चीज़ हो बस पहले पहले थोड़ा फील हों कि यार yes. मैं करा ना करा, अदरवाइज है ना कि ऑल गुड ही है। तो इधरों राधे राधे भेजते ने सानू जतेंद्र चड्डा जी वॉलेट तो, कहते ने सबका दिन मंगलमय हो, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू। तो आप फिर पता करते हैं, लक्की जी तुसी आ गए हो जी, लक्की जी आर यू ऑन एयर,
2: नहीं ये पूछो लक्की जी,
1: सॉरी लक्की जी कि तुसी आर यू पार्क्ड ऑन एयर, नहीं होने चाहिए भाई जी, नोनिया जी दे इस बिहेवियर नूं तुसी लोग प्रमोट ना करया करो।
2: मैं की करा, मैं हर चीज नूं ना ब्रेन चो देख रही हां
1: जी,
0: मैं कहा तुम नवे हो, मैं कहा सानू बहुत चिर हो गया,
1: नहीं मैंने ये टेंशन हो रही है हुन जदों इन्हां नूं कैब ने लैन आना, उन्होंने इन्हें कहने कैरियर है नहीं तेरी गड्डी दा, मतलब की बेस्ट हो रहा है इस वीक दे अंदर, जो हुन भी हो रहा है बेस्ट वो दस दो, जो कुछ बीत गया वो भी दस दो।
0: नहीं कल दा शुरू होया है, हले एक दो दिन होर चलना है बेस्ट।
1: अच्छा
0: काफी लंबा बेस्ट है, हाँ जी
1: ऐसा की है भाई,
2: गुड
0: ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਆਏ ਕੱਲ ਤੇ ਹਨਾ
1: ਜਦੋਂ
2: ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜ ਲਈਏ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ

0: gentlemen, this is your captain. 30 flights, Melbourne to India ya Pakistan, Sydney to India ya Pakistan, kithe bhi ja sakdi hai.
1: Attention please, dil kehta hai kar jana hai. Flight search karke thak gaye. Switch karo Hi-Fi Travels te, your local travel agency. Rated 4.9 star on Google. Book now, pay later. Flight book karni hai? Aaj hi call karo 1300-533-311 te. Ya online book karo hi-fi-travels.com.au te. Je tusi bimar ho, ta AI kol nahi, doctor kol janne ho. Fir kanuni masle vich, faisla khud kyun? Yaad rakho, delay in law is damage in life. Family issue, property da masla, koi immigration di samasya ya koi bhi kanuni matter. Ikko naam jo kam tuhade le kar dene. Bansal Lawyers. Tuhada bharosa, sada tajruba te jit apni. Call 422-905-860 or visit bansallawyers.com.au.
2: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना, होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लई बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर।

0: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना। होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लिए बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप टू फोल्ड लेंडिंग।
1: हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल।
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
3: दिन भर दे कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहुंदे हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी लै जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वह भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिनां च भी तुहाडे आपणिया दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।
1: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
0: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दालां, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम वी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
1: सोना चाहिदा,
4: भरोसा चाहिदा,
1: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042।
5: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
6: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
7: तुसी भी अज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Saad Ali Khan in Urta Teer.
1: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
2: Desh bhakti to yaad aage.
3: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
0: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
4: Woh ye border chal rahi hai?
0: Nahi ji, ye to Urta Teer chal raha hai. From October 9th at cinemas near you.
5: Aa kithe vaj gayi teri gaddi?
6: Gaddi ta theek ho ju, par insurance walyan nu, legal walyan nu itthe pradesh vich samjhaunga kive?
5: Tere vaang kinne hi apne bhain bhraavan di tension minta ch dur kiti hai. Sing smash रिपेयर वाले ने इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करने वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट फ्री लोन कार दी सर्विस मिलती है ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते फ्री लीगल एडवाइस लाइक कॉल करो 0383857048 ते सिंह स्मैश रिपेयर 8 ग्रेस वे रेवन हॉल
7: किचन दा स्टाइल डल लगदा बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया हुन टेंशन खत्म करो आ गया ZJ स्टोन मेसन पाडे घर नु बनाए एकदम क्लासी असि बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल कॉल करो 0410 045 555 या आज ही विजिट करो 104 Collins Road, Melton.
8: Tension, nidi tension.
9: Ki hoya?
8: Athe immigration de inne pange ne, yaar mukde hi nahi.
9: Kaka ji, tension chaddo, phone chakko. Call karo VY Immigration nu, jithe immigration expert Harpal Singh Bajwa, employer sponsor, partner ya parents, ya visa, skilled migration, student visa, MRT ya RRT, appeals te skills assessments de mahir baithe ne. Hune hi appointment li call karo 0410-530-530.
8: Ya 90-77-93.
9: Ya email info@vyimmigration.com.au
8: Yaad rakho 90779733
9: VY Immigration and Education Consultant
8: Har kadam tuade naal

0: दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
1: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना। होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वद लेंडर्स दिनाल तो हर डे ले बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494763700 और व्हाट्सएप टू फोल्ड लैंडिंग।
2: मैनू अपनी नवी दुकान ली प्रीमियम 3D इल्यूमिनेटेड साइन दी अर्जेंट लोड सी। क्विक साइनेज ने इन हाउस डिजाइन, प्रिंटिंग ते प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन सिर्फ 4 to 5 दिनां विच पूरी कर दित्ती। ग्लोइंग शॉप फ्रंट तो व्हीकल रैप्स तक, ब्रांड पूरी स्ट्रीट विच सब तो वख चमक उठिया। विक्टोरिया ते साउथ ऑस्ट्रेलिया विच 12 सालां तो साइनेज लीडर्स। अपने बिजनेस नू चमकाओ, कॉल 1300151616, quicksignage.com.au।
3: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: चलदी दा नाम गड्डी, आ ते सुनिया ही होना, ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनू चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सुमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 0390866655 और विजिट tireforce.com.au।
6: दिल्ली की यात्रा का विचार बना रहे हैं? मेलबर्न से क्वांटस की सीधी उड़ान उपलब्ध है। बाजारों की रौनक देखें या अपनों के साथ फिर से समय बिताएं, अद्भुत स्मारकों को निहारें या घर के बने भोजन का मजा लें। चाहे आप दोस्तों और परिवार से मिलने जा रहे हों या किसी नई जगह की खोज कर रहे हों, क्वांटस की बेहतरीन सेवा का अनुभव करें जिसमें आपका भोजन, पेय, सामान और मनोरंजन शामिल है। आज ही क्वांटस के साथ दिल्ली की नॉनस्टॉप उड़ान बुक कीजिए। 26 अक्टूबर 2026 से 27 मार्च 2027 तक उपलब्ध। नियम और शर्तें लागू।
7: अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन। 30 फ्लाइट्स मेलबर्न टू इंडिया या पाकिस्तान, सिडनी टू इंडिया या पाकिस्तान, कितने भी जा सकती है।
8: अटेंशन प्लीज, दिल कहता है कर जाना है, फ्लाइट सर्च करके थक गए, स्विच करो हाई फाई ट्रेवल से। योर लोकल ट्रेवल एजेंसी रेटेड 4.9 स्टार ऑन गूगल। बुक नाउ पे लेटर। फ्लाइट बुक करनी है, आज ही कॉल करो 1300-533-311 या ऑनलाइन बुक करो हाई फाई ट्रेवल्स.com.au।

0: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
1: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
2: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
1: तुसे भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
3: टेंशन निरी टेंशन
4: की होया,
3: एथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार, मुकदे ही नहीं।
4: काका जी टेंशन छड्डो, फोन चको, कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नु, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉय स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
3: या 90-77-97-33
4: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
3: याद रखो 9077-9733।
4: Viva Immigration and Education Consultant,
3: हर कदम तुहाडे नाल।
0: हुण तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
5: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने इक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड, हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
6: ना दे फेरा।

0: दिल्ली की यात्रा का विचार बना रहे हैं? मेलबर्न से क्वांटस की सीधी उड़ान उपलब्ध है। बाजारों की रौनक देखें या अपनों के साथ फिर से समय बिताएं, अद्भुत स्मारकों को निहारें या घर के बने भोजन का मजा लें। चाहे आप दोस्तों और परिवार से मिलने जा रहे हों या किसी नई जगह की खोज कर रहे हों, क्वांटस की बेहतरीन सेवा का अनुभव करें जिसमें आपका भोजन, पेय, सामान और मनोरंजन शामिल है। आज ही क्वांटस के साथ दिल्ली की नॉनस्टॉप उड़ान बुक कीजिए। 26 अक्टूबर 2026 से 27 मार्च 2027 तक उपलब्ध। नियम और शर्तें लागू।
1: सोना चाहिदा,
2: भरोसा चाहिदा,
1: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ वी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
3: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजास, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: चलदी दा नाम गड्डी, आ ते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनु चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप। टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सुमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 0390866655 और विजिट tirefors.com.au।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना, ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स जिना को लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स। यूनिट 1 19-25 सोमर्टन रोड कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
3: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो बंसल immigration.com.au।
5: मैनू अपनी नवी दुकान ली प्रीमियम 3D इल्यूमिनेटेड साइन दी अर्जेंट लोड सी। क्विक साइनेज ने इन हाउस डिजाइन, प्रिंटिंग ते प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन सिर्फ 4-5 दिना विच पूरी कर दित्ती। ग्लोइंग शॉप फ्रंट तो व्हीकल रैप्स तक ब्रांड पूरी स्ट्रीट विच सब तो वख चमक उठिया। विक्टोरिया ते साउथ ऑस्ट्रेलिया विच 12 सालां तो साइनेज लीडर्स। अपनी बिजनेस नू चमकाओ, कॉल 1300-151616 quicksignage.com.au।
6: कि तुसी जानदे हो कि बच्चे दा लगभग 90% दिमाग उनां दे 5 साल दे होण तो पहला ही विकसित हो जांदा है। मुफ्त किंडर 3-4 साल दे बच्चियां नूं प्राइमरी स्कूल शुरू करन तो पहला 2 साल लई गुणवत्ता वाली सिख्या प्रदान करता है अते परिवारां लई पैसियां दी बचत करता है। किंडर विच बच्चे खेड राही सिखदे हन जिस नाल ओ महत्वपूर्ण समाजिक, भावात्मक अते बौद्धिक हुनर विकसित करदे हन अते नवें दोस्त भी बनाउंदे हन। वधेरे जानकारी लई vic.gov.au/kinder ते जाओ।
7: की चाहिदा, ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लाउणा जां वीजे लई मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा लई एक भरोसेयोग नाम, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट, पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील करदे ने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।
8: किचन दा स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, तुहाडे घर नू बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
9: हुन थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
10: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेयर बी टोयोटा दे नाल।
9: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जीलोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
11: दिवाली रोशनी का त्योहार तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें 4 चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
12: Are you ready to start something? Do what you love? With 38 free TAFE courses and over 130 nationally recognised qualifications, including health, nursing, community services and justice, come to Kangan Institute, the Australian Large Training Provider of the Year 2022. No ATAR needed. It's time to unleash you. At Kangan Institute, call 13 TAFE to apply now or visit kangan.edu.au. Eligibility criteria applies. Some or all of this training is delivered with Victorian and Commonwealth Government funding. RTO 3077.

0: वाह
1: पपियाना पपियाना।
0: वेलकम वेलकम वेलकम वेलकम बैक टू बॉयज मीटअप। मैं हाँ कृष्णा मेरा बलकीरत ते समा हो चुका थोनू बाय बाय टाटा टेक केयर कहंदा, पर उस तो पहला जांदे आंदे थोड़ा ना थोड़ी जी इंफॉर्मेशन दा शेयर करदे जाइए। ते करो जी शेयर।
1: सब तो जड़ी लेटेस्ट एल्बम है जी, वो आई है निर्वैर पन्नू दी परसोना जड़ा ना रख्या, जिहदे विच 14 गाने ने। चौदह गाने ब्लूम होलो दिल अखर बिलो चाम वैनक्लिफ जी ना लगे मेरा क्वाड टप्पे हीरे
2: फ्लॉस
1: फ्लॉस एक 500 जैम जी एम 500 ग्राम होना
2: 500 ग्राम
1: देखो की है इधर सुने हैं। डियर डैड भी है मतलब ये ऑब्वियसली डैडी दे इर्द गिर्द होगा गाना ये भी सुनना। तो ये जड़ी की कहते हैं कि हूँ तक जी एप्पल म्यूजिक के उत्ते चौथे नंबर पर आ।
2: अच्छा
1: दिस एल्बम गुड
2: यार। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, एक चीज मैं कॉल आउट करना चाहूंगा, सब तो वधिया पोस्टर वर्क निर्वैर पन्नू दी एल्बम आ तो पिछली मकतूब दा भी यार परसोना भी बहुत प्यारा पोस्टर, मतलब
1: एक पासे फुल दूजे पासे पासे ताहोल नहीं।
2: हे बिल्कुल सही। ते आपा जांदे ते गाना पता केड़ा सुनांदे जावांगे?
1: आपा सुनावांगे पर उस तो पहले आपा दस दिए कि इधर निजर साहब दी भी पिछले महीने एल्बम आई ऑटोबायोग्राफी जिहदे विच 10 गाने सी। आई डोंट नो इफ यू आर अ फैन ऑफ देम एंड यू लिसन
2: निजर ने मैं नहीं करी
1: सुनता बहुत गाने चन्नी नटान जी का भी आए ने चार सॉन्ग पिछले महीने कीता गुड बॉय शुड बी मी एक गैसोलीना गैसोलीना चलिया गाना नाइस
2: गैसोलीना।
1: हाँ जी हाँ जी
2: वही वाला गैसोलीना।
1: नहीं इन्होंने ऑब्वियसली बदलिया होगा। अमृत मान दी भी आई है जी फार्मेसी चार गाने ही जग्गी जी जग्गी भी एक सिंगर है शायद तुम्हें पता
2: होगा।
1: इनफर्नो उन्हों का भी एक आई थी जिसमें 11 सॉन्ग कड़े ही है पर थोड़ी पुरानी हो चुकी है। गेस्ट
2: जग्गी ने तो यार रीलां बनवाती हैं इफ यू नो यू नो ते
1: जो आप सुनाया भी है आप सरोते हैं
2: आहो आप सुनाया पहले आप सुनाने होने जी नवे नवे गाने असी सुनाने
1: मजाक। जॉर्डन संधू जी भी इन्होंने नवी कर रहे हैं नवे उच्च बूट बाड़ जे पाए इन्होंने ਬੀਬੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਵੱਡੇ ਜਿਹੇ ਬੂਟ ਚਲੋ ਤੇ ਬਾਕੀ

0: विक्टोरिया वासियों, क्या आपको गैस पर खाना बनाना पसंद है? कड़ाके की ठंड वाली रात में तुरंत गर्म हो जाने वाला घर, जब भी आपको जरूरत हो पूरे परिवार के लिए लगातार मिलने वाला गर्म पानी, तो जब तक आप इसका आनंद ले सकते हैं ले लीजिए, क्योंकि स्टेट लेबर इन सब पर बैन लगाने की योजना बना रही है। बैन केरल से कहिए कि आप नहीं चाहते कि कोई आपको बताए कि आपको अपने ही घर में खाना कैसे बनाना है, घर गर्म कैसे रखना है या नहाना कैसे है, पर जाकर गैस सब्सटीट्यूशन रोड मैप को नहीं कहें। डेविड डेविस एमपी द्वारा अधिकृत सदर मेट्रोपॉलिटन रीजन के सदस्य लेवल 1670 चैपल स्ट्रीट साउथ यारा davidavis.com.in।
1: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुग निना विच अपने हर भैन भरा नु उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दालां, ग्रोसरी दा हर सामान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम वी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानु वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ पारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
2: जे तुसी बीमार हो ता एआई कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लई कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
3: सोना चाहिदा,
4: भरोसा चाहिदा,
3: क्वालिटी ते बाई बैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स, स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स, 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042।
5: लादे वे।

0: energysafe.vic.gov.au पर जाए। एनर्जी सेफ हमेशा। विक्टोरिया सरकार मेलबर्न द्वारा
1: किथे वज गई तेरी गड्डी?
2: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालियां नू लीगल वालियां नू इत्थे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें?
1: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
3: यार तू इत्थे इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मैनू पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
5: हुन टेंशन छड़ो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
3: फिर लवाइए किथों?
5: सन करंट वालिया कोलों। 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
4: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते।
6: बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तो हाडे नाल ने। एटीओ ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, एटीओ डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तो हाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
7: Attention, ladies and gentlemen, this is your captain. 30 flights, Melbourne to India ya Pakistan, Sydney to India ya Pakistan, kithe bhi ja sakti hai.
6: Attention, please. Dil kehta hai, kar jana hai. Flight search karke thak gaye. Switch karo, Hi-Fi Travel Stay, your local travel agency. Rated 4.9 star on Google. Book now, pay later. Flight book karni hai? Aaj hi call karo 1300-533-311 te. Ya online book karo hi-fi-travels.com.au te.

0: दिन भर के कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहते हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जाए, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वो भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिनां च भी तुहाडे आपणियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।
1: मैनू अपनी नवी दुकान ली प्रीमियम 3D इल्यूमिनेटेड साइन दी अर्जेंट लोड सी। क्विक साइनेज ने इन हाउस डिजाइन, प्रिंटिंग ते प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन सिर्फ 4 to 5 दिनां विच पूरी कर दित्ती। ग्लोइंग शॉप फ्रंट तो व्हीकल रैप्स तक ब्रांड पूरी स्ट्रीट विच सब तो वख चमक उठिया। विक्टोरिया ते साउथ आस्ट्रेलिया विच 12 सालां तो साइनेज लीडर्स। अपने बिजनेस नू चमकाओ। कॉल 1300 151 6 16, quicksignage.com.au.
2: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Saad Ali Khan in Urda Teer.
3: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
4: Desh bhakti to yaad aa gayi.
5: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
2: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
6: Abhi ek border chal rahi hai.
2: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai from October 9th at cinemas near you.
7: बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेतन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।

0: शर्त लागू।
1: Attention, ladies and gentlemen, this is your captain. 30 flights, Melbourne to India या पाकिस्तान, Sydney to India या पाकिस्तान कितने भी जा सकती है।
0: Attention, please. दिल कहता है कर जाना है, फ्लाइट सर्च करके थक गए। स्विच करो हाई फाई ट्रेवल से, योर लोकल ट्रेवल एजेंसी, रेटेड 4.9 स्टार ऑन गूगल। बुक नाउ पे लेटर। फ्लाइट बुक करनी है आज ही कॉल करो 1300-533-311 ते, या ऑनलाइन बुक करो highfivetravels.com.au ते। बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेतन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा, आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
2: ओपाजी, एक पासे मॉर्गेज उत्ते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
3: हुन टेंशन छड्डो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
2: फिर लवाइए कित्थों?
3: सन करंट वालिया कोलों। 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
0: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते।
4: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना। होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वद लेंडर्स दे नाल तुहाडे लिए बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप 2-Fold Lending।
5: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ।

0: ये तो सी सुना सी आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर ब्रह्मचारी फिल्म शम्मी कपूर ते मुमताज दे उते फिल्माया गया आवाज जिथे तक मैनू पता है आई एम प्रीटी मच श्योर मोहम्मद रफी साहब दी ते सुमन कल्याणपुर शंकर जयकिशन का म्यूजिक वैसे एंड लिरिक्स जो प्लेफुल लिरिक्स ने शैलेंद्र दे लिखे हुए शंकर जयकिशन का जो म्यूजिक है टकीला सॉन्ग है जड़ा है ना उस तो थोड़ा रलदे मिलदे जी ना वो भी सेटिंग ने ने ने ने इंस्पिरेशन इज द थिंग गाइस
1: ओपिनियर दे गाने च घोड़े दी टाप चलदी हुंदी है
0: एंड ऑन दैट नोट डुगड़ुम डुगड़ुम कर दो असी आ गए जी सेकंड सेगमेंट ते आज दे हां जी मेलबर्न दे खुले अखाड़े च क्योंकि आज फ्राइडे है आज तुसी सानू सारेयां नू वधिया वधिया जे गाने सुनाने कवितावां सुनानियां थोड़े ना हफ्ते च सब तो कैंट की होया भाई ये जरूर दसना ते इहदे अंदर आपां इक कॉलर जिन्हां दे नाल हफ्ते दे अंदर कैंट तां कुछ नहीं पर दस पाए हो पर उन्हां नाल ट्रैजेडी की हुंदी है बड़े फनी वे च दस के गए ने बिन दी ट्रैजेडी बिन दी
1: घर घर दी कहानी
0: हां घर घर दी कहानी है हमने आपको सुनानी है ते सानू तुसी जे चाहनो कि असी थानू सुनाइए तो साडे नाल फिर सांझा करो ना यार की होया बेस्ट इस वीक थोड़े नाल
1: कृष्ण जी आज जेड़ा गाना तुसी सुनाया ना मेनू बहुत ही नॉस्टैल्जिक जिहा कर गया
0: क्योंकि
1: जदों गाना चलदा हुंदा सी ना आज

0: काफी सारी खवातीन जो इन्हां दी जिंदगी च आंदियां ने जांदियां ने उन्हां नाल ए वाला गाने ते परफॉर्म करन दी काफी तौर तक मैं सुनने चाहे कोशिश करते ने साढ़े नाल जुड़ चुके ने रिचर्ड जी। रिचर्ड जी तुसी ऑन एयर हो, सत श्री अकाल।
1: रिचर्ड जी
2: सत श्री अकाल। नोनिया जी एंड कृष्णा जी,
1: क्या हाल चाल?
2: बस बल्ले बल्ले ते शावा शावा।
0: मैंने सही इंट्रोडक्शन दी रिचर्ड?
1: हां, मुंह पर आसमां थले।
2: बिल्कुल
0: नाइस।
1: और मैं बल्ले बल्ले,
2: वेरी वेरी नॉस्टैल्जिक सॉन्ग लाइक नोनिया जी सेड। और मेरे मॉम डैड का फेवरेट था एंड मेरा भी फेवरेट है। तो हमारे घर में यही सब ओल्ड वाइनल रिकॉर्ड्स बजते थे।
1: यस,
0: अरे हाँ, है ना, एक ओ भी दौर सीगा वाइनल की, विनाइल की कहते हैं,
1: वाइनल
0: रिकॉर्ड्स था, है ना। That's good. मैं इतने देखे ब्रंसविक दे अंदर दो चार स्टोर्स ने, बट दे ओनली हैव मतलब
1: इंग्लिश
0: स्टोर, बट स्टिल जो वाइब है अंदर दे एंड ऑल दैट, इट्स वेरी नाइस,
1: वेरी नाइस, यस,
0: एक शार्म उधर चीज
2: था। You can burn a vinyl record nowadays, so you can digitally, so there are shops which burn it for you.
0: अच्छा, वाह, क्या बात है।
2: या कट बोलते हैं या बर्न बोलते हैं? कट,
1: बर्न, आई थिंक बर्न,
2: बर्न होएगा।
0: पुठे
1: तरीके नाल गाया एज अ किड?
2: पुठे तरीके से नहीं, नहीं, हम उस समय बहुत इनोसेंट होते, सब कुछ सीधा ही करते थे।
1: हम बचपन से ही पुठे काम करते थे। हमने पीएचडी कर रखी है पुठे कामों में।
2: पुठे काम में कर रखी है
1: जी।
2: तो द बेस्ट थिंग ऑफ द वीक इज एंड विल ऑलवेज बी फॉर आई थिंक द होल ईयर, it's a very proud moment for Radio Hanji family and Victoria. Can you please tell me what it is? Guess karo.
0: Ki Pauline Hanson hun election nahi lad rahi hai? Okay.
2: Sports mein. Hamare Radio Hanji.
0: Achha, nahi, mujhe nahi pata bhai kya hua.
1: Main aaj svere svere sunya Krishna ji cricket khedan di koshish kar rahe ne.
0: Ki assi Fateh Nal time paale match da.
2: No, so Nani ji represented Victoria in the Masters hockey tournament and they won the silver medal against...
1: Yippee!
0: Oh, kya baat hai ji, vadhaiyan, vadhaiyan.
2: Hats off to Nani ji. So, kal main, kya kehte hain, Fox Radio mein line mein tha to announce that because yesterday the segment was about what achievements has someone in your life done at a later stage.
1: Yeah.
2: And I couldn't think of anyone else than her because the Masters is 65 years and above. Age group mein khela Nani ji ne.
1: Wow,
0: that's
2: and
0: great.
2: Aap logon ne unko si game mein pata nahi dekha. And she took the lap of the oval just itne casually, jaise aadhe log to half way the.
1: Yeah.
2: But Nani ji just casually took a jog and came to her.
0: आपने कहा फॉक्स रेडियो पर ये बात कर रहे थे? आवे साडे नाल जावे किसे होर ना बल्ले चलाक सजना। ये तो गल ना
2: है, हमारे रेडियो का भी तो वो जाता है, क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट।
1: एडवर्टाइजमेंट।
2: आई आल्सो से दैट शी इज अ आरजे विद रेडियो हांजी।
1: यस।
0: तुसी उल्टा ना पक्का ही किस तरह कर लो, हफ्ते च ना हर रेडियो कॉल करता कहता गाइस गोइंग गुड पर रेडियो हांजी इज बेटर कह के फोन करता।
1: आफ्टर सम आई एम प्रीटी श्योर आफ्टर सम टाइम दे विल ब्लॉक योर कॉल।
0: ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੋ ਉੱਥੇ ਰਾਹ ਦੇਰ ਆਲਵੇਸ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਹਨਾ
1: ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਹੁੰਦਾ ਭੁਜੀਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਾਹ ਕਿਨੇ ਗਿਆ
0: ਬਦਾਨਾ ਭੁਜੀਆ ਰੀਲੀ ਮਿਸਿੰਗ ਬਦਾਨਾ ਭੁਜੀਆ ਗਾਇਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਨਾ ਭੁਜੀਆ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ

0: hip hip.
1: Hooray.
0: Hip hip.
1: Hooray.
0: Hip hip.
1: हाँ जी.
0: Very good, Ivan जी. बहुत बहुत मुबारक थानू नौवे जन्मदिन दिया. तरीक भी अज नौ है, उपरों थोड़ा नाइन्थ जन्मदिन. अज तो भाई बस फुल खलारा पाओ. फंक्शन, केक, शेक, चॉकलेटा, कोक, मतलब बख्शना नहीं है. जसवाल भाजी बस अज खर्चे ते खर्चा करन इन्ना ज्यादा. अज फंक्शन करो ते सारे परिवार नू भी मुबारक. उम्मीद करदे हां बेटा थोड़ा खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आनंदित रहे सारी उम्र.
1: बहुत सारी मुबारक ईवान नू. परमात्मा करे ईवान नू बहुत सारियां तंदरुस्तियां, खुशियां, कामयाबियां मिलन. हमेशा हसदा मुस्कुरांदा रहे साडा पुत्र, और मां बाप का नाम रोशन करदा रहे, और जवानियां माणदा रहे. दैट्स आर हार्टिएस्ट विश फ्रॉम रेडियो हांजी 1674 AM. थैंक यू
0: जी. जी जी जी बहुत बहुत वधिया. ते हुन थोड़े बाकी दे मैसेजेस ते बाकी दे कॉल्स आपां हुन छोटी जी ब्रेक लवांगे. ते ब्रेक तो बाद आके मैं पक्की गल
1: आई प्रामिस
0: कि मैं सुनाऊंगा.
1: Alright.
0: नहीं सुनाऊंगा, नहीं मैं तो कॉल करूंगा ना. मैं जेडी की कहंदे है गाना भी सुनाऊंगा पहले, है ना, फिर बाद चो थोड़ियां कॉलां सुनांगे. ते इदां ही जेड़ा माहौल चाल है ना, ओनू अगे वधांदे रहांगे. ते मैं चाहना कि ब्रेक ते जान तो पहला जो तुसी कह रहे सीगे कि तुसी भी एक वर्जन बनाया होया गाने दा, ओ प्लीज साडे नाल सारे नाल सांझा करते जाओ.
1: नहीं कर चुके, तुसी सुने नहीं?
0: अच्छा नहीं, ओ काफी लोगों ने पता लगा होना.
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा. आज कल तेरे मेरे प्यार नाप के कच्चे हर दुकान पर.
0: अच्छा
1: ब्यूटीफुल. रंग में और साइज में अवेलेबल.
0: क्या बात है जी. लक्स कोजी वाले डोनिया जी नाल कांटेक्ट कर सकते हैं जो कॉपीराइट चाहते ने इस एड दा. ते हुन दिलजीत जोने मुड़ नु याद कर रहे हो, तुसी सुनो मैं आया छेती यार, छेती आया.

0: हो गई मौत मेरे जमीर दी, लो हो गई मौत जमीर मेरे दी, आखरी साह भी आ किरिया, लक्की ना उठना हुण मुड़के, अज अपनी नजरां विचों जो गिरिया।
1: बहुत सोना, बहुत सोना।
0: हां हो गया अज यकीन मेनू, मेरा जमीर मर चुका है, मेरा जमीर मर चुका है।
1: बहुत खूब भाई जी, थैंक यू सो मच संजा करने लिए, बहुत सोना,
2: बहुत
1: बहुत गहरा, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू भाई जी, थैंक यू भाई जी।
1: And you have
0: so, a rab rakha next week.
1: Have a great weekend. Yes. Karo mojja weekend te.
2: Tera dhyan nal stand to laiyo truck.
0: Point to be noted, my lord.
1: थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है जी, स्टैंड तो ला लो जी अपना ट्रक। साडी भी बाहर कैब आके खड़ी हो गई है, टल्लियां बजा रही है। असली जान दा प्रोग्राम करिए। ते जी जांदे जांदे थोड़े प्यारे प्यारे मैसेजेस जी। नितिन प्रशर जी कहंदे ने कि मॉर्निंग शो नोनिया जी एंड क्रिश शो गोइंग ऑसम, कीप इट अप। थैंक यू जी, थैंक यू जीजा जी, थैंक यू, लव यू,
2: लव यू।
1: ते इधरों 660 वाले अपना जसपाल जी कहंदे ने कि गुड मॉर्निंग रेडियो, हां जी फैमिली। ते बलजीत फरवाली जी कहंदे ने कि अज दा कैंट सी प्रोग्राम।
2: थैंक यू जी,
1: थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ते हुन समा हो चुका है थोड़े तो विदा लैन दा, आस करदे आ थोड़ा अज दा जिहड़ा शो आ बहुत वधिया लग्या होएगा। कोई गलती नाल उपर नीचे कोई शब्द बोलिया गया होवे तो उस लई माफ करना। मैं साइन आउट करदा, ते हुन नोनिया जी थानू बाय बाय करनगे, फिर आपां बाय बाय टाटा करके सतिंदर दा गाना सुनांदे होए जावांगे थानू।
2: एग्जैक्टली, और मेरे वल्लों भी जी सति श्री अकाल है। उम्मीद करदे आ थोड़ा फ्राइडे बहुत सोहणा गुजरूगा, और वीकेंड तुसीं फुल टू फुल इंजॉय करोगे, और मस्त मारते रहोंगे, इंजॉय करते रहोंगे अपनी लाइफ नू, और इसे मस्तियां च याद रखो हमेशा सुनते रहना रेडियो। हां जी, 1674 AM।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: सोना चाहिदा,
5: भरोसा चाहिदा,
4: क्वालिटी ते बाईबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493-536-042।
6: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले। जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। तुन्ना ज्वेलर्स, भरोसे दी निशानी।
7: ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
8: हुन टेंशन छड्डो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी

0: करनी।
1: गलत ठीक है यार, गलत ठीक है, है?
0: की करना की करना खड़ी कच नहीं तोड़या
1: डॉक्टर ज्यूस, डॉक्टर ज्यूस कच तोड़न वाले डॉक्टर ज्यूस
0: क्योंकि पींदे ने जूस, दैट्स व्हाई डॉक्टर ज्यूस।
1: जियो जियो जियो क्या बात है मेरे पीजे किंग, नमस्ते सत श्री अकाल आदाब रेडियो, हां जी 1674 सुन रहे सारे सुनन वालेयां नु श्रोतियां नु प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं हां कृष्णा, मेरे नाल बलकीरत एंड तुसी जुड़ चुके हो साडे नाल अज दा घेंट जे अत जे एपिसोड शो दे जीदा नाम है बॉयज मीट अप। तो तुसी गाना सुन रहे से कली खड़ी बाय वतन साही ते म्यूजिक डॉक्टर ज़ूस दा, ओ तुहानू कच दे ग्लास टुटदे होए तो पता लग गया होएगा। टॉप कमेंट इस वीडियो दा यही कहंदा पिया कि डॉक्टर ज़ूस बस ग्लास तोड़न नू रख्या
0: नहीं पहला जूस भी पींदे ने, पहला जूस पींदे सीधा ग्लास ही नहीं तोड़दे
1: फिर ग्लास तोड़दे ने। हाँ जी बल्कि जी किवें हो, की हाल चाल ने थोड़े?
0: वेखो जी अहीं कल्ले बह के की करना जे तुहाडा मैसेज ना आया यार। नवा बहुत कुछ आया वा कृष्णा जी मार्केट दे विच, खास करके पिछले जेडे महीने दो नंगे है ना सितंबर अक्तूबर, इन्हां च ते ऐम वा भी जिन्ना किसे ने भर के रख्या हुंदा खजाना ते ओह कहिंदा वा भी कितें मैं ना लेट हो जां, उधरों दूजा कहिंदा भी मैं ना लेट हो जां, तीजा कहिंदा मैं ना लेट हो जां, चौथा कहिंदा मैं ना लेट हो जां, ते इदां ही करदे करदे जिन्हें भी तुसीं कह लो भी चर्चा दे विच ने सिंगर्स अपने उन्हां सारिया ने ईपी एलबम जां सिंगल ट्रैक्स सुटते ने मार्केट
1: है ना,
0: आंदे भी आ चको साडे को आ जे, ओह कहिंदा आ चको साडे को आ जे, कहिंदे ने भी 2026 दे खत्म होण तों पहलां पहलां अहीं इक करी तड़थली मचा देणी आ।
1: तड़थ यार
0: हां जी,
1: तड़थली थोड़ी कहेंगा तू, गलत गल यार ठीक है नहीं सही है साडा वर्ड है असीं वरतांगे नहीं, गुड है गुड है गुड है। होर की चल रहा? वैसे एक मैं गल बहुत सही की पर मैनू एक बड़ी वियर्ड चीज लगी जिहड़ी आह कल परसों हुई है कितें
0: की
1: कि अर्जन ने वैसे पहले भी इदा किया होया कि एको दिन दो एल्बमां सुट्टियां, पहली बारी वेख्या कि सिंगर ने एको दिन दो सिंगल ट्रैक सुट्टे,
0: वो इदा ही है फिर वो वखरा ही करदा ना,
1: हां कुछ डिफरेंट करदा, गाने आया दो, एक आया सेड एंड डन एंड दूसरा आया बैड एस, मैनू बैड एस बहुत वधिया लगा,
0: मैनू दूजा भी वधिया लगा, कई लिरिक्स ओहदे इदां दे विचों नाइस ने, मतलब हाले कि ओह सारे जणे कह रहे ने इंटरनेट दे उत्ते वायरलिटी चलण दी इहनू लैके कि बिल्कुल डिफरेंट ही अर्जन दा इह जोनर नहीं ही, अर्जन ने बाहर हो के काम कीता है ना, वर्सटैलिटी दे उत्ते काम कीता, कई कहंदे आ जी वीडियो वधिया बणी आ पर म्यूजिक नहीं वधिया होया, कोई कहंदे
1: ओह मर्सी तों बगैर ना तां करके कहंदे आ,
0: कह लो तुसीं इदां कह लो भावें ओह करन वाली काम ते वधिया कीता मुंडे ने,
1: काम तां ओके
0: पर जिहड़े डिफरेंट करना ते फिर तुहानूं ऑब्वियसली किसी नाल ही करना पऊगा ना, क्योंकि हुण एक बंदे दा जोनर हो सकदा कि ओहदी जिहड़ी पिच आ जां ओहदी कह लो कि क्वालिटी इको तरह की ही हो सकती है,
1: हर किसी ने अपनी नीचे
0: चेंज करनी है तो फिर ऑब्वियसली तुहानू टीम चेंज करनी पैनी।
1: अच्छा एक भी चक्कर है मैं नोटिस किया, ये साडी सारी लाइफ ते भी साडे सारयां दी लाइफ ते भी ढुक जांदी है चीज़ है ना, कि आपां कोई चीज़ करदे होए किसी नूं वेखीए या फिर आप भी करदे होइए तो सानूं टोक टकैया हो जाता कि यार सेम चीज़ क्यों करी जांदे हो ना, कुछ डिफरेंट करो
0: नाले, वो सादा मर्सी साहब इधर बिजी होने ना करन वाला सीजन विच, हाँ।
1: पर मैं उही तो मैं गल ते आ रहा है कि वो हुण लोकी कहंदे आ कि पहले कहंदे रहे कि मर्सी नूं छड़ दे है ना, कि
0: सारे गाने तो बिना
1: हुण एक गाना आया तो लोकी कह रहे कि यार मर्सी तों बगैर क्यों कीता,
0: ब्यूटीफुल
1: मेरे गालिब क्या बात है,
0: ये है
1: क्या
0: डुप्लीकेट गालिब,
1: डुप्लीकेट गालिब, गालिब फ्रॉम सेड एल्बम्स गाइस,
0: ये डे टाइम। सो गाइस गल इदा वा कि टू मैनी गाने आ चुके ने मार्केट दे, चाहे वो करण औजले दा सीजन वन आ, उस तो भी पहला जे गल करिए ते आई एम एन आर्टिस्ट, ए ई आई ओ यू दे नाल एन लगदा गाइस, तुहानूं पता ही है जे तुसीं ग्रामर पढ़ी होवे ते,
1: वेरी गुड,
0: इस करके एन आर्टिस्ट उहनां ने नाम रख्या ही ओ एल्बम दा, ते ओ आई सीगी दलजीत साहब दी,
1: ਆਹੋ ਦਲਜੀਤ ਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ,
0: ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ?
1: ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ,
0: ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
1: ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਇਦ
0: 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਤੜਥਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 7 ਗਾਣੇ ਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਫਿਜ਼ਾਵਾਨ, ਲਵ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਵੀਟ ਥਿੰਗ, ਲੈਂਬੋ ਅਤੇ ਡੈਵਿਲ,
1: ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ।
0: ਇਹ ਗਾਣੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹ ਲਵ ਲਾਈਕ ਦਿਸ,
1: ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ।
0: ਲਵ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਵੈਸੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਡੈਵਲ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜੀ ਲਵ ਲਾਈਕ।
1: ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁੱਡ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਡੈਵਲ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬੜੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਫਿਲਹਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਡੇਢ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕੰਮ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਵੋਟਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਸੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜੇ ਐੱਨ ਯੂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯਾਰ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਕਿਆ ਕੁੜੀ ਹੈ ਬਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਡੱਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬਸ ਚਲੋ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿ ਬਾਏ ਬਾਏ ਟਾਟਾ ਹੋਵੋ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਲ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਿਲ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਉਣੇ, ਘੈਂਟ ਘੈਂਟ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦੋ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗਾਣੇ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਖੜਾ ਜੀ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਬੈਡ ਐਸ ਬਾਏ ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ।
0: ਓਹੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਦਲਜੀਤ ਦਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ।
1: ਅਗਲਾ

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मैनु भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना, ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां को लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप। टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सुमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
3: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो बंसल immigration.com.au।
5: मैनू अपनी नवी दुकान ली प्रीमियम 3D इल्यूमिनेटेड साइन दी अर्जेंट लोड सी। क्विक साइनेज ने इन हाउस डिजाइन, प्रिंटिंग ते प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन सिर्फ 4-5 दिना विच पूरी कर दित्ती। ग्लोइंग शॉप फ्रंट तो व्हीकल रैप्स तक ब्रांड पूरी स्ट्रीट विच सब तो वख चमक उठिया। विक्टोरिया ते साउथ ऑस्ट्रेलिया विच 12 सालां तो साइनेज लीडर्स। अपनी बिजनेस नू चमकाओ, कॉल 1300-151616।
6: गुणवत्ता वाली सिख्या प्रदान करता है अते परिवारां लई पैसियां दी बचत करता है। किंडर विच बच्चे खेड राही सिखदे हन, जिस नाल ओ महत्वपूर्ण समाजिक, भावात्मक अते बौद्धिक हुनर विकसित करदे हन अते नवें दोस्त भी बनाउंदे हन। वधेरे जानकारी लई vic.gov.au/kinder ते जाओ।
7: की चाहिदा, ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लाउणा जां वीजे लई मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा लई एक भरोसे योग ना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट, पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील करदे ने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।
8: किचन दा स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, तुहाडे घर नू बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन।
9: हुन थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरीबी टोयोटा।
10: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेरीबी टोयोटा दे नाल।
9: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड, हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरीबी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
11: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें 4 चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
12: Are you ready to start something? Do what you love? With 38 free TAFE courses and over 130 nationally recognised qualifications, including health, nursing, community services and justice, come to Kangan Institute, the Australian Large Training Provider of the Year 2022. No ATAR needed. It's time to unleash you at Kangan Institute. Call 13 TAFE to apply now or visit kangan.edu.au. Eligibility criteria applies. Some or all of this training is delivered with Victorian and Commonwealth Government funding. RTO 3077.

0: विक्टोरिया वासियों, क्या आपको गैस पर खाना बनाना पसंद है? कड़ाके की ठंड वाली रात में तुरंत गर्म हो जाने वाला घर, जब भी आपको जरूरत हो पूरे परिवार के लिए लगातार मिलने वाला गर्म पानी, तो जब तक आप इसका आनंद ले सकते हैं ले लीजिए, क्योंकि स्टेट लेबर इन सब पर बैन लगाने की योजना बना रही है। बैन केरल से कहिए कि आप नहीं चाहते कि कोई आपको बताए कि आपको अपने ही घर में खाना कैसे बनाना है, घर गर्म कैसे रखना है या नहाना कैसे है, पर जाकर गैस सब्स्टिट्यूशन रोड मैप को नहीं कहें। डेविड डेविस एमपी द्वारा अधिकृत सदर मेट्रोपॉलिटन रीजन के सदस्य लेवल 1670 चैपल स्ट्रीट साउथ 11 davidavis.com.
1: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नु उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दालां, ग्रोसरी दा हर सामान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम वी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-131-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ पारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
2: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लई कर देने, बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजरबा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
3: सोना चाहिदा,
4: भरोसा चाहिदा,
3: क्वालिटी ते बाईबैक वी चाहिदा, चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: थे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल
2: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
3: Haan ji, haan ji.

0: Ladies and gentlemen, this is your captain. 30 flights, Melbourne to India, ya Pakistan. Sydney to India, ya Pakistan, kithe bhi ja sakti hai.
1: Attention please, dil kehta hai, kar jana hai. Flight search karke thak gaye. Switch karo, Hi-Fi Travels te. Your local travel agency, rated 4.9 star on Google. Book now, pay later. Flight book karni hai, aaj hi call karo. 1300-533-311 te. Ya online book karo, hi-fi-travels.com.au te.
2: Kithe vaj gayi teri gaddi?
3: Gaddi ta theek ho ju. ਪਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਕਿਵੇਂ?
2: ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
4: ਸਿੰਕ ਸਮੈਸ਼ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਇਰਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਟੀਮ, ਆਲ ਮੇਜਰ ਐਂਡ ਮਾਈਨਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਵਰਕ ਐਂਡ ਪੇਂਟ ਫ੍ਰੀ ਲੋਨ ਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੰਮ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 0383885748 ਤੇ। ਸਿੰਕ ਸਮੈਸ਼ ਰਿਪੇਅਰ, 8 ਗ੍ਰੇਸ ਵੇ, ਰੈਵਨ ਹਾਲ।
5: ਵਿਆਹ, ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਲਈ ਜੁਐਲਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖਾਸ। ਤੁੰਨਾ ਜੁਐਲਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਲੇਟੈਸਟ ਗੋਲਡ, ਡਾਇਮੰਡ, ਬੁਲੀਅਨ, ਸਿਲਵਰ ਤੇ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਹਰ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਹਰ ਓਕੇਜ਼ਨ ਲਈ। ਜੈਨੂਇਨ ਜੁਐਲਰੀ, ਜੈਨੂਇਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲਡ ਜੁਐਲਰੀ ਤੇ ਫਾਸਟ ਲੋਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 5/150 ਫਾਰਮਰਸ ਰੋਡ, ਤ੍ਰਿਗਨੀਨਾ ਅਤੇ 347 ਡੌਨਸਟੇਲ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਡੈਂਡੀਨੋਂਗ। ਤੁੰਨਾ ਜੁਐਲਰਸ, ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ।
6: दिल्ली की यात्रा का विचार बना रहे हैं? मेलबर्न से क्वांटस की सीधी उड़ान उपलब्ध है। बाजारों की रौनक देखें या अपनों के साथ फिर से समय बिताएं, अद्भुत स्मारकों को निहारें या घर के बने भोजन का मजा लें। चाहे आप दोस्तों और परिवार से मिलने जा रहे हों या किसी नई जगह की खोज कर रहे हों, क्वांटस की बेहतरीन सेवा का अनुभव करें जिसमें आपका भोजन, पेय, सामान और मनोरंजन शामिल है। आज ही क्वांटस के साथ दिल्ली की नॉनस्टॉप उड़ान बुक कीजिए। 26 अक्टूबर 2026 से 27 मार्च 2027 तक उपलब्ध। नियम और शर्तें लागू।
1: बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स, वाइज टैक्स एडवाइजर्स तो हाडे नाल ने। एटीओ ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, एटीओ डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो दियो मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स, वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तो हाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
7: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Sada Ali Khan in Urda Teer.
8: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
9: Desh bhakti to yaad aa gayi.
10: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
7: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
11: Matlab ek border chal rahi hai?
7: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai from October 9th at cinemas near you.
12: Very be open range zoo mein haathiyon ke bare mein jaane. Elephant trail ki sair kare. और इन शानदार वन्य जीवों का उनके विशाल प्राकृतिक आवास में अनुभव लें। हाथियों के झुंड को एक साथ देखें और उनके अनोखे रिश्तों और व्यवहारों को जानें, जो उन्हें इतना अद्भुत बनाते हैं। आज ही zoo.org.au पर अपनी यात्रा की योजना बनाएं।

0: दिल्ली की यात्रा का विचार बना रहे हैं? मेलबर्न से क्वांटस की सीधी उड़ान उपलब्ध है। बाजारों की रौनक देखें या अपनों के साथ फिर से समय बिताएं, अद्भुत स्मारकों को निहारें या घर के बने भोजन का मजा लें। चाहे आप दोस्तों और परिवार से मिलने जा रहे हों या किसी नई जगह की खोज कर रहे हों, क्वांटस की बेहतरीन सेवा का अनुभव करें जिसमें आपका भोजन, पेय, सामान और मनोरंजन शामिल है। आज ही क्वांटस के साथ दिल्ली की नॉनस्टॉप उड़ान बुक कीजिए। 26 अक्टूबर 2026 से 27 मार्च 2027 तक उपलब्ध। नियम और शर्तें लागू।
1: थोड़ी मोटी नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू पूर्वी सोखा अति सुरक्षित बनौंदा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अति बेस्ट गूगल रिव्यूज थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरी बी टोयोटा दे नाल
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।

0: की चाहिदा ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा मिल जुगा सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना जो स्टडी वीजा स्किल्ड वीजा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा डामा पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596 गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस .com.au ते जाओ थोड़ा कोई हल करिए।
1: Attention, ladies and gentlemen, this is your captain. 30 flights, Melbourne to India या पाकिस्तान, Sydney to India या पाकिस्तान कितने भी जा सकती है।
0: Attention, please. दिल कहता है कार जाना है। Flight search करके थक गए। Switch करो Hi-Fi Travel से। Your local travel agency, rated 4.9 star on Google. Book now, pay later. Flight book करनी है? आज ही call करो 1300-533-311 ते या online book करो hi-fi-travels.com.au ते।
2: लादे फेरा

0: दिन भर दे कम्मां कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहते हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वह भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिनां च भी तुहाडे आपणियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।
1: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मैनू भी दस दे सीक्रेट।
2: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
1: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो विजिट goldleafdairy.com।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की होया
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
1: काका जी टेंशन छोड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
0: याद रखो 9077-9733।
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
0: हर कदम तुहाडे नाल।

0: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Attention, ladies and gentlemen, this is your captain. 30 flights, Melbourne to India ya Pakistan, Sydney to India ya Pakistan, kithe bhi ja sakti hai.
3: Attention, please. Dil kehta hai, kar jana hai. Flight search karke thak gaye. Switch karo, Hi-Fi Travel Stay, your local travel agency. Rated 4.9 star on Google. Book now, pay later. Flight book karni hai? Aaj hi call karo 1300-533-311 te. Ya online book karo hi-fi travels.com.au te.
4: Haan ji haan.

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की होया
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल।

0: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड, त्रुगनेना, अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट, डैंडीनोंग। तुन्ना ज्वेलर्स, परोसे दी निशानी।
1: दिल्ली की यात्रा का विचार बना रहे हैं? मेलबर्न से क्वांटस की सीधी उड़ान उपलब्ध है। बाजारों की रौनक देखें या अपनों के साथ फिर से समय बिताएं, अद्भुत स्मारकों को निहारें या घर के बने भोजन का मजा लें। चाहे आप दोस्तों और परिवार से मिलने जा रहे हों या किसी नई जगह की खोज कर रहे हों, क्वांटस की बेहतरीन सेवा का अनुभव करें जिसमें आपका भोजन, पेय, सामान और मनोरंजन शामिल है। आज ही क्वांटस के साथ दिल्ली की नॉनस्टॉप उड़ान बुक कीजिए। 26 अक्टूबर 2026 से 27 मार्च 2027 तक उपलब्ध। नियम और शर्तें लागू।
2: लाले

ना पाए जाए। ए अंत न जाने को बहुता कही है बहुता होए, वड्डा साहेब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। एवड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तुमाए। केते मंगे जोत अपार, केत्या गंत नहीं विचार, केते खप टूटे बेकार, केते लैले मुकर पाहे, केते मूर्ख खाई खाए, केतिया दुख भूख सदमार। ए भेदात तेरी दातार, बंद खलासी पाने होए, और आख न सके कोए, जे को खाए आखन पाए, ओ जाने

ना ओ मरै ना ठागे जाए, जिन कै राम वसै मन माहे, तिथै भगत वसे के लोए, करे आनंद सच्चा मन सोए, सचखंड वसे नंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै का अंत नंत, तिथै लो लो आकार, जिव जिव हुकम तिवै तिवकार, देखै विकसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार, जत बहारा तीरे सुनियार, एरन मत वेद अथियार, पौ खला अगन तपताओ, पांडा पाओ अमृत तित काल, कड़िए शब्द सची।

कालांकार अनुभूत अंग अभावंगत में तपार गुण गण उदार मुन गण बरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मृत गत अखंड आलक्ष्य कंस आदि श्री तरम सर्वा वर्णांडिये अंडंड बांडिये चाचरी चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरियम निर्नामे अकामे यंग प्रिया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चात्री छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृशय अकृशय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेश के आभेज वेश के आगाज कर्म के आभंज भरम के आभेज लोक के आदित शोक के अवधूत वर्ण के बेपूत करण के राजम प्रवाह के धर्मंग तुजा है के आशोक वर्ण के सर्वा अवर्ण के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मंग स्वरूपे के अनुपव अनुपे के आद अदेव है के आप अभेव है के चक्रंग बहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा के रही में रहा कह के पाक बेअब है के गैबिल गैब है के अफल गुना है के साहल सुना है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राज रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मानिए के सर्वत्र दानिए के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाओ के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र मानिए सदैव प्रदानीय के सर्वत्र जापिया के सर्वत्र थापिय के सर्वत्र पान के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वंग कलीम के परमंग फहीम के अकाल अलाम के साहेब कलाम के हुसन वजू है तमामल रजू है हमेशा सलाम सलीख में गनी बुल शिकस्ते गरीब उल पुलस्ते मुलंदर मुकाने जमीन उल जुमाने तमीजुल तमामे रजूअल निदाने हरीफुल अजीमे रजाय यकीने अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनी मुल खिराज है निरकत स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रभा है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूप है अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गन त्रिवादे अगजे अगाधे सुभंग स्वरूपागे सो सर्वान रागे तिरपुगत स्वरूप है अच्छे जय छूत है कि नरकम परनाश है पृथुल परवास है निरकत परवाह है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत परवाह है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है अभेक है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अधूत है अनास है उदास है अधंध है अभंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अभेक है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपड़ चंतो प्रसाद सर्वंगहंता सर्वंगंता सर्वंगख्याता सर्वंगज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रुआल चंद तो प्रसाद नमो नरगनासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंग भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साग शरीक है अमित तो अमिक है सदैव परवाह है अजय है अजा है भागवती छंद तो प्रसाद के जाहिर जहूर है
ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਮੇਸ਼ਲ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਉਸਨ ਚਿਰਾਗ ਹੈ, ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰੋਜੀ ਦਹੰਦ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜਕ ਰਹੰਦ ਹੈ, ਕਰੀਮੁਲ ਕੁਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਗਨੀਮੁਲ ਖਰਾਜ ਹੈ, ਗਰੀਬੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ, ਹਰੀਫੁਲ ਸ਼ਕਨ ਹੈ, ਹਿਰਾਸਲ ਫਕਨ ਹੈ, ਕਲੰਕਮ ਪਰਨਾਸ ਹੈ, ਸੁਮਸਤਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਅਗੰਜਲ ਗਨੀਮ ਹੈ, ਰਜਾਇਕ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਸੁਮਸਤਲ ਜੁਬਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਰਾਹ ਹੈ, ਕਿ ਨਰਕਮ ਪਰਨਾਸ ਹੈ, ਬਿਸਤਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬਰ ਗਵਨ ਹੈ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਲ ਰਵਨ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਪਰੰਗ ਪਰੰਗ ਈਸ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਅਦੇਸਲ ਅਲੇਖ ਹੈ, ਅਭੇਸਲ ਅਭੇਖ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜੁਮਾ ਹੈ, ਅਮੀ ਕੁਲੁਮਾ ਹੈ, ਕਰੀਮਲ ਕੁਮਾਲ ਹੈ, ਗਜੁਰ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਅਚਲੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਕ੍ਰਮਿਤੋ ਸੁਭਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈ।

गुणगन मुदाम हर बर अगंज हर नर प्रभंज अनगन प्रणाम मुन मन सुनाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनभव अनास मुन मन प्रगास गुणगन प्रणाम जलथन मुदाम अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अभंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनभव अनास त्रित तर तुरा।

अनछे जगात आज जनाबाद अनछन जगात अनरंजवाद अनटुन पंडार अनठंड अबार आठ धर्म अत ढीठ करम अन बरन अनंत दाता मंत हर बोल मना शांतो प्रसाद करना ले आयार का ले है कल खंडर है मैं मंडर है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है धृत के तरण है जग के करण है मनमानी है जग जानी है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वपाशी है सर्वनाशी है करनाकर है विश्वम्भर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कल खंडस है परते पर है करनाकर है अजपाजप है अतपात्व है अग्रताकृता है अमृतामृता है अमृतामृता है करनाकृत है अग्रताकृता है तरनीतृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है कलगायक है विश्वम्भर है करुणालय है निर्मनायक है सरूपायक है पाव पंजन है अर्गंजन है रवतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकर है हरताहर है परमात्मा है सर्वात्मा है आत्म बस है जस के जस है पुजांग पुरा छंद नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम संक्षात रूपे नमो परंग ततंग अतंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्र अनादंगूते कलंकार रूपे अकलंकार अलंके नमो आसे आसे नमो बांग बंके अभंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी कामे एक श्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज भंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अभेक अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अभर्मंग अगजे अलेखे पुयांग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे सुमस्तर प्रनासे अगंजन अनामे सुमस्तल निवासे निर्कामंग बभूते सुमस्तं स्वरूपे कुकर्मंग प्रनासी सोतर्मंग प्रभूते सदा सचिदानंद सतरंग प्रनासी करीमल कुरंदा सुमस्तल निवासी अजायब बभूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयम्बम सुमंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते। तो प्रसाद सोइए सराव समूह सिदान के देख फिरो करजोग जति के सूर सुरार दन शुद्ध सुधायक सन समूह अवनेवगति के सारी देश को देख रहे मत को न देखत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोर तुरंग कुरंग से कुद पौन के गौन कुजात निवारे पारी पजान कपूर बली बन्याव सीत न जात बिचारे इते पै तो कांपे पुपुर अंध को नांगे पाए बिदारे जीत बिरे सब दे दिशान को बार जित टोल मृदंग निगारे गुजत गुण गजान के सुंदर हंसत है राज हजारे पूत पवेख पवान के पुपुर कौन गने नी जात बिचारे श्री पत श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे तीर्थ नाम दया दम दान सो संयम नेम अनेक बसिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन समान समान को पिख है पौन हार जति जत हर सब सुचार हजार को देख है श्री भगवान पजे बिन पूपत एक रति बिन एक न लिख है शुद्ध सुबा दुरंत दुबा सुसाज सनह दुर्जान

श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। वीर अपार बड़े बड़े आर अवचार इसार की तार बछैया तोर देश बुलंद बवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोरण हर सुबातन ही चकचार लवैया साहेब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया दानव देव फिनन निशाचर पूत पवेख पवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रताप अनबार जय तुन पापन के बहु पुंज कपेंगे सात समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सवै अब लोग जपेंगे मानव इंद्र गजिंद निरातम जोन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजात गदान अनेक स्वंबर साज भरेंगे ब्रह्म हेश्वर विष्णु सचिपत अंत बस

0: नहात फिरयो लिए सात समुंदरन लोग गयो पर लोग गो आयो बास कियो बखियान सो बैठ कै ऐसे ऐसे वैस बतायो साच कहो सुन लियो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्र पायो कहूं ले पायन पूतरियो सिर कहूं ले लिंग ले ढलकायो कहूं लिखियो हर अवाची दिशा में कहूं पुछा को शीस नवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।
1: कवियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुठ सबे तुम कावो आप हाथ दे मोय बचावो सुखी वसे मोरो परवारा सेवक सिख सबे करतारा मोर इच्छा निज कर दे करिये सब बैरन को आज संगरिये पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ जो बर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरिय मरण काल का त्रास नवरिय पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जो करियो रक्षा राख लो मोय राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंदुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दशकंता काल पाए ब्रह्मा बपरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो जमन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताए हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जचन उपजायो आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार किसी को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी शिवकन को शिवगुण सुख दियो सतन को पलमो बद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतम दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने काट काट के पट पट की जाने जब उदकर करा कर तारा प्रजा तरत तब दे अपारा जब आकर्ष करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब थारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही तेरे निरालम जानत बेद भेद अल आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत पेदा।

महादेव को कह सदा शिव, निरंकार का चिंतन पेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पिन पिन तो तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कहब सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कई पूपा, अंडज जे राज से तजकिनी, उत्पुज खान बहु रजदीनी, कहो फू राजा है बैठा, कहो सिमट पयो शंकर कैठा, सगरी सृष्टि दिखाए चंभव, आज जुगा स्वरूप सुजंभव, आवरक्षा मेरी तुम करो, सिखु बार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रन काता, जे आज तो तब सरनी परे, तिन के दुष्ट दुखद है मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिन के तुम संकट सब तारे, जो कल को एक बार तिहाय है, ताके काल निकट नहीं आए है, रच्छा होए ता सब काला, दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे न हर हो।

0: गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ, शब्द रतन जित मन लागा ए हो आसमाओ, सब सेती मन मिलिया सच्चे लाया पाओ, आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए, कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ।
1: शिव सकत आप उपाय कै करता पे हुकुमरताए, हुकुमरताए आप वेख है गुरमुख किसै बुझाए, तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए, गुरमुख

माया अगन सावी को जई करता है खेल लचाया जांत सपाना ता जमया परिवार भला पाया लिव छुड़की लगी तरसना माया अमर वरताया ए माया जित हर विसरै मोह उपजै पौ दूजा लाया कह नानक

स्वागत है आपका पुण्य दर्शन में। मैं हूं आपका दास। कहते हैं कि मनुष्य भगवान को पाने के लिए मंदिर जाता है, पूजा करता है, माला फेरता है, तीर्थ यात्राएं करता है। ये सब हमारी आध्यात्मिक यात्रा के सुंदर माध्यम हो सकते हैं, किंतु एक प्रश्न है आज। अगर हमारी पूजा बढ़ रही है, किंतु उसके साथ साथ हमारा अहंकार भी बढ़ रहा है, तो क्या हम वास्तव में अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं? अगर हम रोज भगवान का नाम लेते हैं, किंतु घर में किसी से प्रेम से बात नहीं करते, किसी गरीब को छोटा समझते हैं, दूसरों की गलती पर उनका अपमान करते हैं, तो हमें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता केवल बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि निर्मल हृदय से होकर जाता है। कैसे? जानते हैं एक ऐसे संत की वाणी के माध्यम से, इस छोटे से अंतराल के बाद।

पुण्य दर्शन में आप हैं अपने दास के साथ संत कबीर। उनकी वाणी आज भी हमें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करती है। कबीर जी का एक प्रसिद्ध दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले आ कोए, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोए। कितना सरल अर्थ है। जब मैं संसार में दूसरों की बुराइयां खोजने निकला तो मुझे कोई भी अपने से बुरा नहीं मिला, किंतु जब मैंने अपने ही मन में झांक कर देखा तो मुझ में ही कमियां दिखाई देने लगी। कितनी गहरी बात है मित्रों। हमारे जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि घर में कोई परेशानी आए, ऑफिस में कोई परेशानी आए, बिजनेस में कोई परेशानी आए तो हमें तुरंत दूसरे की गलती दिखाई देती है। पति पत्नी के बीच विवाद हो तो दोनों को लगता है कि गलती सामने वाले की है। परिवार में रिश्ते बिगड़े तो हर व्यक्ति अपनी बात सही और दूसरे की बात गलत ही मानता है। यही अहंकार है। जब हमें अपनी गलती दिखाई देना बंद हो जाती है। कबीर दास जी हमें दूसरों को दोष देने से पहले अपने मन को देखने की प्रेरणा देते हैं। और यही बात भक्ति में भी लागू होती है। कैसे? बताता हूं थोड़ी देर में। मैं यूं गया, यूं आया।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। इंश्योरेंस शर्ता लागू।
1: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
2: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालियां नू लीगल वालियां नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें?
1: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
3: आप सुन रहे हैं पुण्य दर्शन।

पुण्य दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। भगवान के सामने सिर झुकाना आसान है, किंतु अपने अहंकार को झुकाना कठिन है। मित्रों, पूजा करते समय हाथ जोड़ना आसान है, किंतु किसी अपने से गलती होने पर माफी मांगने के लिए हाथ जोड़ना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। किंतु जरा सोचिए, अगर हम अपने भीतर की कमियों को स्वीकार करना नहीं सीखेंगे तो उनमें सुधार कैसे आएगा भला? इसका मतलब भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना है या अपने स्वभाव को भी बेहतर बनाना है? संत कबीर जी की वाणी हमें याद दिलाती है कि यदि अध्यात्म की शुरुआत केवल संसार को बदलने से नहीं बल्कि अपने भीतर झांकने से होती है। ध्यान दीजिए, यहां केवल पूजा करने की बात नहीं है, यहां हमारे चरित्र की बात है, हमारे व्यवहार की बात है, हमारे भीतर के अहंकार को कम करने की बात है। तो आज पुण्य दर्शन सुनने वाले सभी श्रोताओं से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। आज किसी एक व्यक्ति को चुनिए जिसके साथ आपका मन मुटाव है। अपने मन में ईमानदारी से देखिए कि उस रिश्ते को सुधारने में आपकी क्या भूमिका हो सकती है। हो सके तो अपनी गलती स्वीकार कीजिए, किसी की बात धैर्य से सुनिए या बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद कीजिए। सच्ची भक्ति केवल यह नहीं है कि हम परमात्मा के सामने कितनी बार सिर झुकाते हैं, यह भी है कि परमात्मा की बनाई हुई दुनिया में हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इस पर कीजिए विचार और मुझे दीजिए आज्ञा, फिर लेकर आऊंगा आपके लिए पुण्य दर्शन। मैं हूं आपका दास, नमस्कार।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 ते या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: दिल्ली की यात्रा का विचार बना रहे हैं? मेलबर्न से क्वांटस की सीधी उड़ान उपलब्ध है। बाजारों की रौनक देखें या अपनों के साथ फिर से समय बिताएं, अद्भुत स्मारकों को निहारें या घर के बने भोजन का मजा लें। चाहे आप दोस्तों और परिवार से मिलने जा रहे हों या किसी नई जगह की खोज कर रहे हों, क्वांटस की बेहतरीन सेवा का अनुभव करें जिसमें आपका भोजन, पेय, सामान और मनोरंजन शामिल है। आज ही क्वांटस के साथ दिल्ली की नॉनस्टॉप उड़ान बुक कीजिए। 26 अक्टूबर 2026 से 27 मार्च 2027 तक उपलब्ध। नियम और शर्तें लागू।
1: चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तो हाड़ी नाल ने एटीओ ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, एटीओ डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तो हाड़े बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
2: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Saad Ali Khan in Urda Teer.
3: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
4: Desh bhakti to yaad aa gayi.
5: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
2: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
5: Woh ye border chal rahi hai?
2: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai from October 9th at cinemas near you.
1: Hun thode modde naal modda milake thodi tarakki di raah nu hor vi saukha ate surakhit banaun da vaada karda hai Varibee Toyota.
6: Jithe hai Toyota di best technology, best customer सर्विस अति बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो Varibee Toyota दे नाल
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग Varibee Toyota द स्मार्ट चॉइस
7: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है तुसी एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर सामान वाजिब रेट ते ले सकदे हो पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम वी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार ग्रोसरी दी होम डिलीवरी ले नंबर लिख लो 0430-123-394 दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच

0: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ AI ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਕਿਉਂ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਡਿਲੇ ਇਨ ਲਾ ਇਜ਼ ਡੈਮੇਜ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਫੈਮਿਲੀ ਇਸ਼ੂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਸਲ ਲਾਇਰਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ, ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਆਪਣੀ। ਕਾਲ 4229058860 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ bansallawyers.com.au।
1: ਵੈਰੀ ਬੀ ਓਪਨ ਰੇਂਜ ਜ਼ੂ ਮੇ ਹਾਥੀਓ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਜਾਣੇ, ਐਲੀਫੈਂਟ ਟ੍ਰੇਲ ਕੀ ਸੈਰ ਕਰੇ ਔਰ ਇਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਨਯ ਜੀਵੋ ਕਾ ਉਨਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਆਵਾਸ ਮੇ ਅਨੁਭਵ ਲੇ। ਹਾਥੀਓ ਕੇ ਝੁੰਡ ਕੋ ਏਕ ਸਾਥ ਦੇਖੇ ਔਰ ਉਨਕੇ ਅਨੋਖੇ ਰਿਸ਼ਤੋ ਔਰ ਵਿਵਹਾਰੋ ਕੋ ਜਾਣੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹੇ ਇਤਨਾ ਅਦਭੁਤ ਬਣਾਤੇ ਹੈ। ਆਜ ਹੀ zoo.org.au पर अपनी यात्रा की योजना बनाएं।
2: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना, होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लिए बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494763700 और व्हाट्सएप टू फोल्ड लेंडिंग।
3: दिल्ली विच करे मेरी बहन, वो बस एक रंग देख के समझ जाती है कि उसनु अपनी पसंद की साड़ी मिल गई है, इसलिए भावे थोड़ी भैन नु अपनी पसंद चुनने लिए वक्त लगता होवे जो उसने पहला ही अपना मन बना लिया होवे। रिमिटली राही अपने घर पैसे भेजना सिर्फ एक लेन देन नहीं है, क्योंकि जिथे पैसा अगे बढ़ता है उथे जिंदगी अगे बढ़ती है। रिमिटली, दुनिया भर विच पैसे भेजो।
4: चलदी दा नाम गड्डी, आ ते सुनिया ही होना, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਲ ਮੇਜਰ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੇ ਟਾਇਰਸ, ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ ਲਈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਟਾਇਰ ਫੋਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਸਰਵਿਸਿੰਗ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਰਿਪੇਅਰਸ, ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਰੀਪੇਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ। ਟਾਇਰ ਫੋਰਸ, ਯੂਨਿਟ 1, 19-25 ਸੋਮਰਟਨ ਰੋਡ, ਕੈਂਪਲਫੀਲਡ। ਕਾਲ 0390866655 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ tireforce.com.au।
5: ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਰੀ ਬੀ ਟੋਯੋਟਾ,
6: ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਟੋਇਟਾ ਦੀ ਬੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਬੈਸਟ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਗੂਗਲ ਰਿਵਿਊਜ਼। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟੋਇਟਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੈਰੀ ਬੀ ਟੋਇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ।
5: ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 0431-365-186 ਤੇ 212-216 ਓਲਡ ਜੀ ਲੌਂਗ ਰੋਡ, ਹਾਪਰਸ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ। ਵੈਰੀ ਬੀ ਟੋਯੋਟਾ, ਦ ਸਮਾਰਟ ਚੋਇਸ।
7: We might all be different, but one thing unites us. We're all Victorians and we all deserve a say in its future. Are you ready to vote this state election Saturday 28 November? Not sure? Check your enrolled online. If you've changed your name or address, update your details. And if you've turned 18, you must enroll. So come on Victoria, make sure you're enrolled by 8 p.m. Tuesday 3 November and make your voice heard. Visit vec.vic.gov.au to enroll today. Authorised by S. Bloomall, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
8: Diwali, Roshni ka Tyohar. To chalo, shaan ke saath zaike se lagayein. Isme char chaand, rivazon ke rang, khano ka swaad aur Diwali ka ehsaas rakhein barqarar. अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
9: सोना चाहिदा,
10: भरोसा चाहिदा,
9: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा, चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स, स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी, पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत, कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ वी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स, 310/2 मेन स्ट्रीट, पॉइंट कुक। कॉल 0493536042।
11: अपने घर को इलेक्ट्रिक बनाने की सोच रहे हैं? ऐसा करना आपकी सोच से अधिक आसान हो सकता है। इजी इलेक्ट्रिक SEC आपको छूट और बचत का हिसाब लगाने, उपकरणों की तुलना करने और भरोसेमंद कारीगरों की खोज करने में सहायता देता है। ये सब कुछ एक ही स्थान पर। आप बिजली के बिलों पर प्रति वर्ष $2,000 से अधिक की बचत कर सकते हैं। शुरू करने के लिए तैयार हैं? easyelectricscc.com.au पर जाएं। बिजली के बिलों पर बचत करना SEC के साथ एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। विक्टोरिया सरकार, मेलबर्न द्वारा प्राधिकृत।
12: बिजनेस चला
10: ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹਰ ਚੈਲੰਜ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਬੀ ਪਾਰਟਨਰਸ ਵਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ATO ਆਡਿਟਸ, ਟੈਕਸ ਡਿਸਪਿਊਟਸ, ATO ਡੈਕਸ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦਿਓ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਸ਼ਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ sebipartners.au। ਸੈਬੀ ਪਾਰਟਨਰਸ ਵਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਟੈਕਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ।
12: विक्टोरिया वासियों, क्या आपको गैस पर खाना बनाना पसंद है? कड़ाके की ठंड वाली रात में तुरंत गर्म हो जाने वाला घर, जब भी आपको जरूरत हो पूरे परिवार के लिए लगातार मिलने वाला गर्म पानी, तो जब तक आप इसका आनंद ले सकते हैं ले लीजिए, क्योंकि स्टेट लेबर इन सब पर बैन लगाने की योजना बना रही है। बैन केरल से कहिए कि आप नहीं चाहते कि कोई आपको बताए कि आपको अपने ही घर में खाना कैसे बनाना है, घर गर्म कैसे रखना है या नहाना कैसे है, पर जाकर गैस सब्स्टिट्यूशन रोड मैप को नहीं कहें। डेविड डेविस एमपी द्वारा अधिकृत सदर मेट्रोपॉलिटन रीजन के सदस्य, लेवल 1670 चैपल स्ट्रीट साउथ 11, davidavis.com.au।
13: किथे वज गई तेरी गड्डी?
14: गड्डी ता ठीक हो जू, पर इंश्योरेंस वालिया नू, लीगल वालिया नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवे?
15: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है। सिंह स्मैश रिपेयर वालिया ने, इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम। फ्री लीगल एडवाइस लाइक कॉल करो 0383857748 ते। सिंह स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
16: आर यू रेडी टू स्टार्ट समथिंग? डू व्हाट यू लव? With 38 free TAFE courses and over 130 nationally recognised qualifications, including health, nursing, community services and justice, come to Kangan Institute, the Australian Large Training Provider of the Year 2022. No ATAR needed. It's time to unleash you at Kangan Institute. Call 13 TAFE to apply now or visit kangan.edu.au. Eligibility criteria applies. Some or all of this training is delivered with Victorian and Commonwealth Government funding. RTO 3077.

0: वाह
1: पपिया न पपिया
0: वेलकम वेलकम वेलकम वेलकम बैक टू बॉयज मीटअप। मैं हाँ कृष्णा मेना बलकीरत ते समा हो चुका थोनू बाय बाय टाटा टेक केयर कहन दा, पर उस तो पहला जांदे आंदे थोड़ा ना थोड़ी जी इन्फॉर्मेशन दा शेयर करदे जाइए। ते करो जी शेयर।
1: सब तो जड़ी लेटेस्ट एल्बम है जी, वो आई है निर्वैर पन्नू दी परसोना जड़ा ना रख्या, जिहदे विच 14 गाने ने। चौदह गाने ब्लूम होलो दिल अखर बिलो चाम वैन क्लिफ जी ना लगे मेरा क्वाड टप्पे हीरे
2: फ्लॉस
1: फ्लॉस एक 500 जैम जी एम 500 ग्राम होना
2: 500 ग्राम
1: देखो की है इहदे विच सुने
2: नहीं मैं। डियर डैड,
1: डियर डैड भी हैगा, मतलब ए ऑब्वियसली डैडी दे इर्द गिर्द होगा गाना, ये भी सुनना। तो ये जी कहते हैं कि हूँ तक जी एप्पल म्यूजिक के उत्ते चौथे नंबर

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हुण तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के तुहाडी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानूं हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तों वेर बी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
4: दिल्ली की यात्रा का विचार बना रहे हैं? मेलबर्न से क्वांटस की सीधी उड़ान उपलब्ध है। बाजारों की रौनक देखें या अपनों के साथ फिर से समय बिताएं, अद्भुत स्मारकों को निहारें या घर के बने भोजन का मजा लें। चाहे आप दोस्तों और परिवार से मिलने जा रहे हों या किसी नई जगह की खोज कर रहे हों, क्वांटस की बेहतरीन सेवा का अनुभव करें जिसमें आपका भोजन, पेय, सामान और मनोरंजन शामिल है। आज ही क्वांटस के साथ दिल्ली की नॉन स्टॉप उड़ान बुक कीजिए। 26 अक्टूबर 2026 से 27 मार्च 2027 तक उपलब्ध। नियम और शर्तें लागू।
5: लादे फेर

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की होया
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे नहीं
1: काका जी टेंशन छड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल
2: मैनू अपनी नवी दुकान ली प्रीमियम 3D इल्यूमिनेटेड साइन दी अर्जेंट लोड सी क्विक साइनेज ने इन हाउस डिजाइन प्रिंटिंग ते प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन सिर्फ 4 to 5 दिनां विच पूरी कर दित्ती ग्लोइंग शॉप फ्रंट तो व्हीकल रैप्स तक ब्रांड पूरी स्ट्रीट विच सब तो वख चमक उठिया विक्टोरिया ते साउथ ऑस्ट्रेलिया विच 12 सालां तो साइनेज लीडर्स अपनी बिजनेस नू चमकाओ कॉल 1300-151616 quicksignage.com.au
3: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Sada Ali Khan in Urda Teer.
4: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
5: Desh bhakti to yaad aage.
6: Desh kaun sa hai? Ye bhool gaya.
3: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
7: Oh, ye border chal rahi hai.
3: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai. From October 9th at cinemas near you.
8: Attention, ladies and gentlemen, this is your captain. 30 flights, Melbourne to India ya Pakistan. Sydney to India ya Pakistan kithe bhi ja sakti hai.
9: Attention, please. दिल कहता है कर जाना है फ्लाइट सर्च करके थक गए स्विच करो हाई फाई ट्रेवल्स पे योर लोकल ट्रेवल एजेंसी रेटेड 4.9 स्टार ऑन गूगल बुक नाउ पे लेटर फ्लाइट बुक करनी है आज ही कॉल करो 1300-533-311 या ऑनलाइन बुक करो हाई फाई ट्रेवल्स.com.au पे
10: हाँ जी

0: ब्रोकर्स। अपनी इंश्योरेंस की हर लोड़ ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
2: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
1: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट गोल्ड लीफ dairy.com।